0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, मानवीय जीवन का हर कार्य, चाहे वह हमारे छोटे कार्यों में ही क्यों ना हो, अपने में सदैव प्रभावशाली होता है। हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में क्यों ना करते हों, वह या तो सकारात्मक या नकारात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी को प्रभावित करता है। यह अलग बात है कि हम उसकी प्रभावकारिता को तुरंत अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। हमें उनका एहसास अपने में ना भी होता हो, लेकिन वे निश्चित रूप में व्यक्तियों, जगहों को प्रभावित करती हैं। यह इसीलिए क्योंकि हमारे कार्यों और बातों में एक अभूतपूर्व शक्ति का समावेश होता है।

0: श्रोताओं, वर्ष के 15वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा सृजित सारी चीजों में व्याप्त शक्ति और उस शक्ति के कारण दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपनी सचेतना में इस तथ्य पर चिंतन करें कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को देखते और पाते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। क्या हमारे कार्य, बोली और वचन हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को, हमारे सुनने वालों को सकारात्मक रूप में अधिक प्रभावित करते या उन्हें नकारात्मकता का शिकार बनाते हैं? क्या हम अपने जीवन में व्याप्त ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का एहसास करते हैं जिनके द्वारा ईश्वर अपने भले कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करने की योजना बनाते हैं?
1: यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए, लेकिन उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
0: श्रोताओं, ईश्वर के सुमधुर जीवनदायी वचन जो हमारे जीवन के अंतस्थल में बोए जाते हैं, हम उन वचनों को अपने हृदय रूपी उपजाऊ भूमि में ग्रहण करें और उसे संजोकर यत्न से रख सकें, जिससे वे प्रभावकारी ढंग से ईश्वरीय राज्य के लिए 30 गुना, 40 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न कर सकें। नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के वचन की प्रभावकारिता को पानी और बर्फ के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आकाश से उतरते और पृथ्वी को सींचकर हरियाली से भर देते हैं, जिससे भूमि बीज बोने वालों को फल और खाने वालों के लिए अनाज दे सके। नबी इसाइयास कहते हैं, ईश्वर का वचन भी उसी भांति प्रभावकारी है जो मानव के हृदयों में ईश्वर की ओर से बोया जाता है, जिससे वह सारी मानवता के लिए मीठे और सुंदर फल उत्पन्न कर सके। श्रोताओं, जिस भांति हमारी धरती जल की प्यासी है, जिसके द्वारा वह अपनी उर्वरकता को प्रभावकारी बनाती और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खाने को अन्न उत्पन्न करती है, ठीक उसी भांति मानव का हृदय, जो किसी भी भूमि से 100 गुना अधिक उर्वरक है, अपने में फल उत्पन्न करने के योग्य तब होता है जब वह अपने में ईश्वर से आने वाले आशीषों और कृपाओं को ग्रहण करता है, और ऐसा तब होता है जब वह जीवनदायी ईश वचनों को अपने में धारण करता, उसे सहेज कर रखता और उसमें सदैव चिंतन करता है। ईश्वर के वचनों में इस भांति हम देखते हैं कि जीवन देने की अद्वितीय शक्ति भरी है। इसी कारण यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने पिता से मिले वचनों को अपने सुनने वालों के हृदयों में बोने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए मानवीय हृदय की उर्वरकता को व्यक्त करता है, जो उत्कंठा में अपने लिए ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करती है। हम सभी ईश्वर से मिलन की चाह रखते हैं। यह हर हृदय की अधीरता है जहां हम अपने ईश्वर से मिलन द्वारा अपने में दिव्य आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें दूसरों के लिए प्रभावकारी बनाता है। मानव के हृदय में एक गहरी

चाह व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप हम उसे कई रूपों में फल उत्पन्न करने की उत्सुकता से भरा पाते हैं। यह उत्सुकता उनमें एक तरह से प्रसव वेदना उत्पन्न करती है। मानव के रूप में हम अपने गुणों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को कई रूपों में व्यक्त करने की चाह रखते हैं, लेकिन बहुधा हम अपने में उन चीजों को अपने से बाहर नहीं ला सकते हैं जब तक हम अपने को उस ईश्वर से संयुक्त नहीं करते जिनके द्वारा सारी चीजें सृजित हुई और होती हैं। अतः हम सभी ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, उनसे हमारे मिलन की, जो हमारी चाहतों को फलहित करते और हमें अपनी वेदना से मुक्त करते हैं। ईश्वर से हमारा मेल हमारे जीवन से उन सारी चीजों को प्रस्फुटित करता है जिन्हें उत्पन्न करने हेतु हम में उत्सुकता और व्याकुलता होती है। ईश्वर के संग हमारा मेल आत्मा के विभिन्न कृपा दानों को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए और दूसरों के संग बांटने को अग्रसर करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने में दिव्य आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इस तथ्य को आज का सुसमाचार हमें और भी सरल रूप में समझने हेतु मदद करता है, जिसे हमने बोने वाले के दृष्टांत स्वरूप सुना। बोने वाले स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं, जो अपनी ओर से हमारे लिए पहल करते हैं। हमारा जीवन उनकी ओर से हमारे लिए सर्वप्रथम एक पहल है। हमारे गुण और हमारी क्षमताएं हम में बोए गए वे बीज हैं जो हमारे जीवन में फलहित होते और ईश्वर के राज्य हेतु फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर ने हमारे जीवन में उत्तम बीजों को बोया है, वे बीज हम में व्याप्त भूमि के अनुरूप उगते, बढ़ते और विकसित होते हुए फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के द्वारा बोए गए बीजों का फलहित होना भूमि पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के वचन रूपी बीजों को किस मनोभाव से धारण करते हैं। यदि हमारे हृदय रूपी भूमि कठोर और पथरीली है तो वहाँ निश्चित ही बीज नहीं उगेंगे। यदि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं तो वे विकसित नहीं होंगी। यदि वे कम विश्वास रूपी भूमि में गिरे हैं तो निश्चित ही वे मुरझा जाएंगी, और यदि वे अच्छी भूमि में गिरती हैं तो वे निश्चित ही अधिक फल उत्पन्न करेंगी। केवल फल ही नहीं बल्कि मीठा और स्वादिष्ट फल, जिसकी चाह ईश्वर हम सबों से करते हैं। श्रोताओं, यीशु हमें अपने वचनों को सुनने का आह्वान करते हुए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। आइए हम अपने कानों को ईश वचनों के लिए खोलें, उन्हें सुनें और उन्हें अपने जीवन में अमल करें। ईश वचनों के माध्यम हम अपने को मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के संग संयुक्त करते हुए उनके मनोभावों को धारण करें, जो हमें अपनी प्रेरिताई में प्रभावकारी होने को मदद करेगा।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के परम धर्म पीठ उद्यान में स्थित बोर्गो लौदातो सी में रोम धर्म

0: उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो 14वें के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। पवित्र मिस्सा के बाद स्वागत और नाश्ता दिया गया। अल्बानो के बार दुओमो ने नाश्ते की व्यवस्था की थी। इसके बाद उन्हें बोर्गो लौदातो सी का दर्शन कराया गया और बाद में संत पापा लियो 14वें ने भोजन से पहले सभी का स्वागत किया। इस पहल के आयोजकों कार्डिनल बाज्जो, रोम धर्म प्रांत के विकर जनरल कार्डिनल बाल्डो रेइना को सहृदय धन्यवाद दिया और भोजन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद सभी ने खुशी से भोजन का आनंद लिया। उधर वाटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ मीटिंग के बाद मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों का कहना है कि धर्माध्यक्ष ओसोरियो अफोंसो की हत्या कलीसिया और देश दोनों के लिए सच्चाई, सुलह और नए सिरे से शुरुआत का रास्ता बननी चाहिए। मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों ने कहा कि संत पापा लियो की नज़दीकी और एकजुटता न सिर्फ उनके लिखे और पब्लिक में कही गई बातों से बल्कि उनके साथ हुई मुलाकात से भी साफ दिखती है। धर्माध्यक्षों ने कहा कि हमारी मीटिंग के दौरान हमें एहसास हुआ कि मोजाम्बिक में हम जिस वास्तविकता में जी रहे हैं उसके बारे में संत पापा कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। 6 जून की सुबह धर्माध्यक्ष ओसोरियो की हत्या की खबर आने के बाद से ही मोजाम्बिक की कलीसिया इस दुखद घटना को बहुत दुख और चिंता के साथ जी रही है। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने क्वेलिमेन धर्म प्रांत की स्थिति पर नजर रखने के लिए आल्टो मोलोकुए के धर्माध्यक्ष एस्टेवाओ एंजेलो फेर्नांडो को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष इग्नासियो ने कहा कि आधिकारिक तौर पर धर्माध्यक्ष की हत्या के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक की गई एकमात्र जानकारी यह है कि धर्माध्यक्ष को एक हाई कैलिबर बंदूक से गोली मारी गई थी। यह कोई आम पिस्तौल नहीं है बल्कि युद्ध का हथियार है। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद धर्माध्यक्ष ओसोरियो के सबसे करीबी साथियों में से एक धर्मप्रांतीय चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में एक और पुरोहित फादर सेल्सो को भी हिरासत में लिया गया था। धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि बुनियादी सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। धर्माध्यक्ष ओसोरियो को किसने मारा, किसने हत्या करने का आदेश दिया और इसका मकसद क्या था। उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ऑफिस ने पिछले मई में हुए अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा करा दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता बायो ओनागुना ने घोषणा की कि मई में दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में हुए हमले के दौरान अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा कर दिया गया है। बंदूकधारियों ने 15 मई को देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आयो राज्यों के 3 स्कूलों से 46 छात्रों और एक स्टाफ को अपहरण कर लिया था। खबर है कि कुछ अपहरणकर्ता मारे गए जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कीव पर रूस के हमले की एक और रात, अब तक 11 लोग घायल हुए हैं जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन की राजधानी के मेयर विटाली और यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने यह खबर दी। एक बयान में कहा गया कि एक हफ्ते में तीसरी बार रूस ने कीव को निशाना बनाया है। सोलोमिस्की इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया। डर्निट्स्की इलाके में ट्रैफिक लाइट के एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम में आग लग गई। आसपास की रिहायशी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। दनीप्रोव्स्की इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। बचाव कर्मी और दूसरी जरूरी सेवाएं कार्यरत हैं। इस बीच कीव की सेनाएं रूसी ऊर्जा सेक्टर के खिलाफ छापे तेज कर रही हैं। रिफाइनरों, डिपो और तेल टर्मिनलों को निशाना बना रही है ताकि क्रेमलिन के राजस्व के मुख्य स्रोत में से एक को कमजोर किया जा सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: آئیے ہم مل کر سنت پاپا کے ساتھ

चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति आशा करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानवीय जीवन का हर कार्य, चाहे वह हमारे छोटे कार्यों में ही क्यों ना हो, अपने में सदैव प्रभावशाली होता है। हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में क्यों ना करते हों, वह या तो सकारात्मक या नकारात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी को प्रभावित करता है। यह अलग बात है कि हम उसकी प्रभावकारिता को तुरंत अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। हमें उनका एहसास अपने में ना भी होता हो, लेकिन वे निश्चित रूप में व्यक्तियों, जगहों को प्रभावित करती हैं। यह इसीलिए क्योंकि हमारे कार्यों और बातों में एक अभूतपूर्व शक्ति का समावेश होता है। श्रोताओं, वर्ष के 15वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा सृजित सारी चीज़ों में व्याप्त शक्ति और उस शक्ति के कारण दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपनी सचेतना में इस तथ्य पर चिंतन करें कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को देखते और पाते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। क्या हमारे कार्य, बोली और वचन हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को, हमारे सुनने वालों को सकारात्मक रूप में अधिक प्रभावित करते या उन्हें नकारात्मकता का शिकार बनाते हैं? क्या हम अपने जीवन में व्याप्त ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का एहसास करते हैं, जिनके द्वारा ईश्वर अपने भले कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करने की योजना बनाते हैं?
1: यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए, लेकिन उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले।
0: श्रोताओ, ईश्वर के सुमधुर जीवनदायी वचन जो हमारे जीवन के अंतस्थल में बोए जाते हैं, हम उन वचनों को अपने हृदय रूपी उपजाऊ भूमि में ग्रहण करें और उसे संजोकर यत्न से रख सकें, जिससे वे प्रभावकारी ढंग से ईश्वरीय राज्य के लिए 30 गुना, 40 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न कर सकें। नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के वचन की प्रभावकारिता को पानी और बर्फ के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आकाश से उतरते और पृथ्वी को सींचकर हरियाली से भर देते हैं, जिससे भूमि बीज बोने वालों को फल और खाने वालों के लिए अनाज दे सके। नबी इसाइयास कहते हैं, ईश्वर का वचन भी उसी भांति प्रभावकारी है जो मानव के हृदयों में ईश्वर की ओर से बोया जाता है, जिससे वह सारी मानवता के लिए मीठे और सुंदर फल उत्पन्न कर सके। श्रोताओ, जिस भांति हमारी धरती जल की प्यासी है, जिसके द्वारा वह अपनी उर्वरकता को प्रभावकारी बनाती और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खाने को अन्न उत्पन्न करती है, ठीक उसी भांति मानव का हृदय, जो किसी भी भूमि से 100 गुना अधिक उर्वरक है, अपने में फल उत्पन्न करने के योग्य तब होता है जब वह अपने में ईश्वर से आने वाले आशीषों और कृपाओं को ग्रहण करता है, और ऐसा तब होता है जब वह जीवनदायी ईश वचनों को अपने में धारण करता, उसे सहेज कर रखता और उसमें सदैव चिंतन करता है। ईश्वर के वचनों में इस भांति हम देखते हैं कि कि जीवन देने की अद्वितीय शक्ति भरी है। इसी कारण यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने पिता से मिले वचनों को अपने सुनने वालों के हृदयों में बोने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए मानवीय हृदय की उर्वरकता को व्यक्त करता है, जो उत्कंठा में अपने लिए ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करती है। हम सभी ईश्वर से मिलन की चाह रखते हैं। यह हर हृदय की अधीरता है जहां हम अपने ईश्वर से मिलन द्वारा अपने में दिव्य आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें दूसरों के लिए प्रभावकारी बनाता है। मानव के हृदय में एक गहरी चाह व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप हम उसे कई रूपों में फल उत्पन्न करने की उत्सुकता से भरा पाते हैं। यह उत्सुकता उनमें एक तरह से प्रसव वेदना उत्पन्न करती है। मानव के रूप में हम अपने गुणों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को कई रूपों में व्यक्त करने की चाह रखते हैं, लेकिन बहुधा हम अपने में उन चीजों को अपने से बाहर नहीं ला सकते हैं जब तक हम अपने को उस ईश्वर से संयुक्त नहीं करते जिनके द्वारा सारी चीजें सृजित हुई और होती हैं। अतः हम सभी ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, उनसे हमारे मिलन की, जो हमारी चाहतों को फलहित करते और हमें अपनी वेदना से मुक्त करते हैं। ईश्वर से हमारा मेल हमारे जीवन से उन सारी चीजों को प्रस्फुटित करता है जिन्हें उत्पन्न करने हेतु हमें उत्सुकता और व्याकुलता होती है। ईश्वर के संग हमारा मेल आत्मा के विभिन्न कृपा दानों को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए और दूसरों के संग बांटने को अग्रसर करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने में दिव्य आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इस तथ्य को आज का सुसमाचार हमें और भी सरल रूप में समझने हेतु मदद करता है, जिसे हमने बोने वाले के दृष्टांत स्वरूप सुना। बोने वाले स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं, जो अपनी ओर से हमारे लिए पहल करते हैं। हमारा जीवन उनकी ओर से हमारे लिए सर्वप्रथम एक पहल है। हमारे गुण और हमारी क्षमताएं हममें बोए गए वे बीज हैं, जो हमारे जीवन में फलहित होते और ईश्वर के राज्य हेतु फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर ने हमारे जीवन में उत्तम बीजों को बोया है। वे बीज हममें व्याप्त भूमि के अनुरूप उगते, बढ़ते और विकसित होते हुए फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के द्वारा बोए गए बीजों का फलहित होना भूमि पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के वचन रूपी बीजों को किस मनोभाव से धारण करते हैं। यदि हमारे हृदय रूपी भूमि कठोर और पथरीली है तो वहाँ निश्चित ही बीज नहीं उगेंगे। यदि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं तो वे विकसित नहीं होंगी। यदि वे कम विश्वास रूपी भूमि में गिरे हैं तो निश्चित ही वे मुरझा जाएंगी, और यदि वे अच्छी भूमि में गिरती हैं तो वे निश्चित ही अधिक फल उत्पन्न करेंगी। केवल फल ही नहीं बल्कि मीठा और स्वादिष्ट फल, जिसकी चाह ईश्वर हम सबों से करते हैं। श्रोताओं, यीशु हमें अपने वचनों को सुनने का आह्वान करते हुए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। आइए हम अपने कानों को ईश वचनों के लिए खोलें, उन्हें सुने और उन्हें अपने जीवन में अमल करें। ईश वचनों के माध्यम हम अपने को मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के संग संयुक्त करते हुए उनके मनोभावों को धारण करें, जो हमें अपनी प्रेरिताई में प्रभावकारी होने को मदद करेगा।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के परम धर्म पीठीय उद्यान में स्थित बोर्गो लौदातो सी में रोम धर्म प्रांत के करीब 200 गरीबों और शरणार्थियों के साथ दोपहर का भोजन किया, जिसमें 35 बच्चे थे। उन 200 गरीबों में रोम के चेंत्रो एस्ताली जेस्विट रेफ्यूजी सर्विस JRS सेंटर से मदद पाने वाले 13 शरणार्थी भी थे। संत पापा के साथ भोजन नाम की इस पहल की शुरुआत आज सुबह सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पौत्र मिस्सा समारोह मनाने से हुई, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो बागियो ने की। कार्डिनल फाबियो ने कहा कि बोर्गो लौदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो 14वें के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। पवित्र मिस्सा के बाद स्वागत और नाश्ता दिया गया। अल्बानो के बार दुओमो ने नाश्ते की व्यवस्था की थी। इसके बाद उन्हें बोर्गो लौदातो सी का दर्शन कराया गया और बाद में संत पापा लियो 14वें ने भोजन से पहले सभी का स्वागत किया। इस पहल के आयोजकों कार्डिनल बाजो, रोम धर्म प्रांत के विकर जनरल कार्डिनल बाल्डो रेइना को सहृदय धन्यवाद दिया और भोजन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद सभी ने खुशी से भोजन का आनंद लिया। उधर वाटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ मीटिंग के बाद मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों का कहना है कि धर्माध्यक्ष ओसोरियो अफोंसो की हत्या कलीसिया और देश दोनों के लिए सच्चाई, सुलह और नए सिरे से शुरुआत का रास्ता बननी चाहिए। मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों ने कहा कि संत पापा लियो की नज़दीकी और एकजुटता न सिर्फ उनके लिखे और पब्लिक में कही गई बातों से बल्कि उनके साथ हुई मुलाकात से भी साफ दिखती है। धर्माध्यक्षों ने कहा कि हमारी मीटिंग के दौरान हमें एहसास हुआ कि मोजाम्बिक में हम जिस वास्तविकता में जी रहे हैं उसके बारे में संत पापा कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। 6 जून की सुबह धर्माध्यक्ष ओसोरियो की हत्या की खबर आने के बाद से ही मोजाम्बिक की कलीसिया इस दुखद घटना को बहुत दुख और चिंता के साथ जी रही है। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने क्वेलिमेन धर्म प्रांत की स्थिति पर नजर रखने के लिए आल्टो मोलोकुए के धर्माध्यक्ष एस्टेवाओ एंजेलो फेर्नांडो को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष इग्नासियो ने कहा कि आधिकारिक तौर पर धर्माध्यक्ष की हत्या के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक की गई एकमात्र जानकारी यह है कि धर्माध्यक्ष को एक हाई कैलिबर बंदूक से गोली मारी गई थी। यह कोई आम पिस्तौल नहीं है बल्कि युद्ध का हथियार है। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद धर्माध्यक्ष ओसोरियो के सबसे करीबी साथियों में से एक धर्मप्रांतीय चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में एक और पुरोहित फादर सेल्सो को भी हिरासत में लिया गया था। धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि बुनियादी सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। धर्माध्यक्ष ओसोरियो को किसने मारा, किसने हत्या करने का आदेश दिया और इसका मकसद क्या था। उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ऑफिस ने पिछले मई में हुए अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा करा दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता बायो ओनागुना ने घोषणा की कि मई में दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में हुए हमले के दौरान अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा कर दिया गया है। बंदूकधारियों ने 15 मई को देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आयो राज्यों के 3 स्कूलों से 46 छात्रों और एक स्टाफ को अपहरण कर लिया था। खबर है कि कुछ अपहरणकर्ता मारे गए जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कीव पर रूस के हमले की एक और रात, अब तक 11 लोग घायल हुए हैं जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन की राजधानी के मेयर विटाली और यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने यह खबर दी। एक बयान में कहा गया कि एक हफ्ते में तीसरी बार रूस ने कीव को निशाना बनाया है। सोलोमिस्की इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। डर्निट्स्की इलाके में ट्रैफिक लाइट के एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम में आग लग गई। आसपास की रिहायशी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। दनीप्रोवस्की इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। बचाव कर्मी और दूसरी जरूरी सेवाएं कार्यरत हैं। इस बीच कीव की सेनाएं रूसी ऊर्जा सेक्टर के खिलाफ छापे तेज कर रही हैं। रिफाइनरों, डिपो और तेल टर्मिनलों को निशाना बना रही है, ताकि क्रेमलिन के राजस्व के मुख्य स्रोत में से एक को कमजोर किया जा सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.ovolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: उसका चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार।
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर।

0: श्री धर्म अवृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
1: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।

0: परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोता, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक एवं उनकी मां की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यूक्रेन में 2022 में बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण शुरू होने और लगातार 5 साल तक युद्ध जारी रहने के कारण कई माताओं ने अपने प्रिय बेटों को खो दिया या उन माताओं के लिए अत्यंत दुखदायी है। लेकिन इस पीड़ा के बावजूद कुछ माताओं ने अपने साहस का परिचय दिया और वे प्रेरणा स्रोत बन गईं। ओलेना उन्हीं माताओं में से एक हैं। कहानी यूक्रेन के पुलिस ऑफिसर तारस कौरिक और उनकी मां ओलेना की है। तारस की फरवरी 2023 में मौत हो गई। यह दर्द, याद और उम्मीद से भरी कहानी है और साथ ही शहीद एवं लापता लोगों के परिवारों के लिए सांत्वना। मेरे लिए और हर माँ के लिए वह सबसे अच्छा बेटा था। इन्हीं शब्दों के साथ ओलेना अपने बेटे तारस कौरिक की याद करती हैं, जिनका जन्म 1988 में पश्चिमी यूक्रेन के हालिबोका गांव में हुआ था। उनकी कहानी में सालों के प्रवासन, युद्ध और दुख के साथ साथ एक हिम्मत भी शामिल है, जिससे एक माँ अपने बेटे की याद को संजोती और अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल देती है। 1999 में ओलेना ने यूक्रेन छोड़कर इटली में काम करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने अपने मुश्किल आर्थिक स्थिति के कारण लिया था, ताकि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सके। तारस अपनी माँ से दूर बड़ा हुआ। अपना कैरियर चुनते हुए वह पुलिस बल में शामिल हुआ। उसने 2014 में देश के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लौटने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स में अपनी सेवा जारी रखी, लेकिन बड़े पैमाने पर रूसी हमले ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। मार्च 2022 में तारस को माइन क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए बूचा, एरपिन और होस्टोमेल शहरों में भेजा गया। वहीं उन्होंने युद्ध के सबसे बड़े असर देखे। ओलेना बताती हैं कि जब वे घर लौटे तो वे बहुत बदल गए थे। उन्होंने जो देखा था उसका उन पर बहुत असर पड़ा था। पत्नी और 8 साल के बच्चे के होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से मोर्चे पर जाने का फैसला किया। जब उनकी मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो उन्हें आज भी याद है। लोग युद्ध से भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं वहाँ ज्यादा काम का हूँ। यह फैसला डोनेस्क इलाके में अनाथ बच्चों के साथ काम करने के उनके अनुभव से भी आया था। उन्होंने अपने फैसले का कारण बताते हुए माँ से कहा, उन बच्चों का कोई नहीं बचा। 14 फरवरी 2023 को माँ और बेटे ने देर रात तक फोन पर बात की। तारस जानता था कि उसकी यूनिट को बखमुट इलाके में भेजा जाएगा। उसने अपनी माँ को बताया, 2 हफ्ते पहले यहाँ 250 आदमी पहुँचे थे, 1 हफ्ते बाद अब सिर्फ 50 जिंदा बचे। अगले दिन उसने उससे फिर से भरोसा दिलाया, हम मोर्चे पर जा रहे हैं, हम शनिवार को बात करेंगे, लेकिन वह फोन कॉल कभी नहीं आया। कई दिनों की परेशानी, तलाश और उम्मीद के बाद ओलेना इटली छोड़कर यूक्रेन चली गई। हफ्तों तक अपने बेटे को अस्पतालों में ढूंढा और इस सोच पर अड़ी रही कि उसे कैदी बना लिया गया है। वह कहती रही, मुझे यकीन है कि तारस जिंदा है। इंतजार के उन दिनों में ओलेना ने रेड क्रॉस का भी सहारा लिया और दूसरे परिवारों के साथ पोप फ्रांसिस से एक मुलाकात में शामिल हुए। बारी में संत निकोलस के पौत्र अवशेष के सामने एक ही प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को लौटा दें, चाहे जीवित या मृत। कुछ दिनों बाद तारस का शव मिला। वे याद करती हैं कि उनकी ममता की चीख मीलों तक सुनी जा सकती थी, एक ऐसा दर्द जिसे समय के साथ उनके परिवार और समाज ने सहारा दिया। आज ओलेना ने अपने समुदाय में एक संघ बनाया है जो शहीद सैनिकों की माताओं और पत्नियों को एक साथ लाता है। हर साल मदर्स डे पर वे उन लोगों की मदद करने के लिए एक साथ आने, प्रार्थना करने और याद करने का अवसर आयोजित करती हैं जो इसी तरह का दुख झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी निश्चित किया कि 18 फरवरी 2023 को शहीद हुए तारस के सभी 22 साथियों को राजकीय सम्मान मिले, जिसको बाद में किया गया। उनकी दुआएं खासकर उन परिवारों के साथ हैं जो अभी भी अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। वे कहती हैं,
मैं अक्सर उन माताओं के बारे सोचती हूँ जो अभी भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। इस दर्द के लिए कोई शब्द नहीं है, हम बस जिंदा हैं। इसी अनुभव ने उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है। एक माँ ने उनसे कहा, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बात करनी है। इसलिए उन्हें यकीन है कि नज़दीकी, याद और इंसानियत में बहुत ताकत होती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक और उनकी माँ की कहानी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका आज कल की पीढ़ी, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, समाज में नई और पुरानी पीढ़ी की सोच से आज के बुजुर्ग दोराहे पर खड़े हैं। युवा पीढ़ी नई सोच के साथ जिंदगी के पथ पर दौड़ रही है तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती। कुछ लोगों का मानना है कि बुजुर्ग आज के युवक युवतियों पर तीखी टीका टिप्पणी करते हैं। इनका कहना है कि उनके जमाने में तो मर्यादा थी। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि बुजुर्ग दकियानूसी परंपराओं को ढो रहे हैं। नई पीढ़ी को यह याद करनी चाहिए कि बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है। उनका कहना भले ही दकियानूसी लगे पर वे उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। वहीं बुजुर्गों को भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। युवा बुजुर्गों की मदद करें, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखें तो बुजुर्गों को भी युवाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका आज कल की पीढ़ी।
1: क्या ये आजकल की पीढ़ी भी, जब देखो तब आपस में फिल्मों की ही बातें करते रहते हैं। अब वो शर्मा जी का बबलू देखो, अरे उसके पिताजी लाख कह रहे हैं कि दूसरे दिन परीक्षा है भाई, जरा पढ़ लिख लो। लेकिन नहीं, साहबजादे को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मतलब है।
2: अब आप क्यों किसी और के लिए अपना खून जला रहे हैं? वो बबलू अच्छा खासा टॉपर लड़का है, और मान लिया कि कल को वो हो भी गया फेल तो उसकी फीस हमें तो नहीं भरनी है।
1: यही बस यही बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है। हमें क्या लेना देना है? अरे भाई, हम सभी ऐसे सोचने लगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा?
2: आजकल सभी अपना अपना सोचने को सक्षम है। जो किसी और के विषय में सोचता है ना, उसे पंचायती कहा जाता है।
1: हाँ, आजकल सभी को अपना अपना काम करना जो पसंद है, किसे लेना देना है कि इस बूढ़े को क्या चाहिए। अरे बहू, शाम्भवी, वो केले के पकौड़े बनाए क्या? कई दिनों से मन कर रहा था।
3: बना दिए हैं पिताजी, आइए, प्याज और पालक के भी बनाए हैं।
1: हाँ हाँ ठीक है, एक हाथ बार मेरे मन का क्या बना दिया, ऐसा ढिंडोरा पिटा जा रहा है कि बस। आजकल किसी के पास समय ही कहाँ है कि माता पिता के पास बैठकर बातें करें।
4: पिताजी कहाँ हैं आप? अरे वाह, पकोड़े बनाए हैं। पिताजी आज मैंने हाफ डे लिया है, शाम को अब हम सभी सिटी पार्क में जाएंगे, वहाँ से सेंट्रल होटल में खाना खाकर ही लौटेंगे।
1: क्या फिजूल खर्ची लगा रखी है, आजकल की पीढ़ी के पास पैसे क्या आ गए हैं, हर चीज को पैरों की नोक पर ही रखते हैं।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उसने छुट्टी ली है आपके लिए, ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं फिजूल खर्ची का।
1: और नहीं तो क्या, जवानी है, फुर्ती है, इसलिए पैसे का जोर दिखाना चाह रहा है। कल को मेरे जैसा रिटायर्ड हो जाएगा तब मालूम होगी पैसे की कीमत। यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है।
3: पिताजी पानी, पकौड़े और लाऊं?
1: रहने दो। अरे शाम्भवी, वो गुप्ता जी ने कुछ कागज दिए थे टाइप करने को, हो गए हैं क्या?
3: जी पिताजी हो गए हैं, आपके दराज के पास रख दिए हैं।
2: सुनिए जी, आपके लिए गुप्ता जी का फोन है।
1: हाँ हाँ आया।
3: माँ मैं क्लास जाकर आती हूँ।
2: हाँ बेटे, मुन्ना सो रहा है क्या?
3: जी सो रहा है, उसका दूध बनाकर रख दिया है, बस एक मिनट माइक्रोवेव करना रहेगा।
2: तुम आराम से जाओ बेटा, आज क्लास में परीक्षा है ना?
3: जी अच्छा मैं चलती हूँ।
2: ठीक है बेटा।
1: हाँ गुप्ता साहेब, बोलिए क्या हाल है? अरे हमारा क्या है भाई, बस वक्त को कोस रहे हैं और उसी को काट रहे हैं। ये आजकल की पीढ़ी भी, अरे अब अपना जमाना थोड़ी रह गया है। आजकल जिसे देखो बस अपना ही सोचता है, अपना काम करने का किसी के पास समय थोड़ी है। अरे हाँ, वो तुम्हारे कागज बहू ने टाइप कर दिए हैं, अब आजकल की बहुओं से थोड़ा ही होता है घर का काम धाम, बस अपने बच्चों को सास के भरोसे छोड़कर चली जाती है। बस यार चल रहा है, चल रखता हूँ, अपना काम तो खुद ही करना होगा। अपने बुढ़ापे में कहाँ वो सुख जो अपने बाप दादाओं ने भोगा। अब कुछ पत्रिकाओं का चंदा भरना था, अब लगता हूँ उसी काम में।
4: पिताजी ये लीजिए।
1: ये क्या है?
4: ये रसीदें हैं पिताजी, आप हर महीने जो पत्रिकाएं मंगवाते हैं उनकी।
1: हाँ हाँ रख दे, जरा सा काम क्या कर दिया, प्रमाण पत्र मांगने चला है और वो आश्रम का ड्राफ्ट बनवा दिया था।
4: जी बनवा दिया था, और मैं खुद जाकर वहाँ के मैनेजर से मिल आया हूँ। वो कह रहे थे कि आश्रम में 5 और सदस्य आने वाले हैं, इसलिए उनका खर्चा मैंने नकद भर दिया है। और पिताजी, ये आपके लिए लाइब्रेरी से किताबें बदला कर लाया हूँ।
1: हाँ रख दो, किसे आजकल बूढ़ों की फिक्र है। जरा असुविधा हुई नहीं कि कर दिया घर से बाहर, सभी जगह एक ही हाल है। ये आजकल की पीढ़ी तो बस
2: बस भी करिए जी, कितना बोल रहे हैं। बहू जो कहे वो हुक्म बजाने को तैयार है, आपका छोड़ आपके दोस्तों का भी काम कर देती है। बेटा आपके खाने पीने, दवा दारू, मनोरंजन और समाज सेवा तक का ख्याल रख रहा है, और आप हैं कि उन्हें उन लड़कों के समकक्ष रख रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है।
1: तो और क्या, तुम इस भ्रम में मत रहना वसुधा कि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। ये जो अपनी जायदाद है ना, उसके पीछे हो रहे हैं सारे नाटक। ये आजकल की पीढ़ी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो मिश्रा जी को देखा था, कैसे नरम दिल बनते थे। सारी प्रॉपर्टी जीते जी बेटे के हवाले कर दी और अब जा पहुँचे वृद्धाश्रम।
2: देखिए जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि इस समय हमारे देश में 35 करोड़ से भी ज़्यादा बूढ़े हैं जो अपनी संतानों पर आश्रित हैं, और देश के वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या कुल इनके 5% से ज़्यादा नहीं है जो घर से निकाले गए। तो क्या उन 5% नई पीढ़ी के लोगों के पीछे आप सभी को बदनाम करते फिरेंगे?
1: लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे निकले तो, यदि कल को उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल लिया तो?
2: देखिए, आप अच्छा व्यवहार रखेंगे ना तो आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी आपको हाथों पर उठाकर रखेंगे, लेकिन ढेर सारी जायदाद रखकर भी आप ये फूटी जबान चलाएंगे तो आपके प्रति किसी के मन में क्या सम्मान रह जाएगा?
1: ये सब कुछ तुम्हें सुधीर ने कहा होगा।
2: वो क्यों कहने लगा कुछ भी? क्या मेरे आँख नहीं है देखने को, कान नहीं है सुनने को? अपने दोस्तों की महफिलें जमाते हैं आप, सभी के बीच बहू से चाय पकौड़े की फरमाइशी करते हैं आप, और वही बहू जब सभी को प्रेम से नाश्ता परोसती है तब उसी के सामने कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए तो जरा, क्या गुजरती होगी उसके मन पर।
1: लेकिन मैं उसे थोड़े ही कहता हूँ।
2: लेकिन उस समय नई पीढ़ी यानी वो ही होती है ना वहाँ, उसे तो यही लगता होगा कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए ये पिताजी को कभी भी संतुष्ट नहीं रखा जा सकता।
1: अरे लेकिन ये तो उसका कर्तव्य है ना।
2: माना कि ये उसका कर्तव्य है, लेकिन जब वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रही है तब आप उसे सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं?
1: देखो वसुधा, मेरे मन में तो ये बात नहीं होती। चारों ओर सभी के साथ जो होता हुआ देखता हूँ वही सबके सामने कह देता हूँ।
2: लेकिन इन सभी में आप शामिल नहीं है क्या? क्या आप अपने दोस्तों को ये नहीं बता सकते कि आपके बेटे बहू कितनी अच्छी तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं? आप लोग तो जैसे मौसम और राजनीति की चर्चा करते हैं वैसे ही आकर नई पीढ़ी की बुराई करने लग जाते हैं। आखिर कभी अपनी ओर भी तो देखिए।
1: वसुधा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सचमुच में बड़ा भाग्यवान हूँ, गुप्ता जी के बेटे बहू भी उनका ख्याल रखते हैं।
2: और आप दोनों ही हैं जो सबसे ज्यादा इस नई पीढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, हर पीढ़ी के साथ जीवन बदलता है, उसकी शैली बदलती है, थोड़ा हमें भी बदलना चाहिए। अब आपके ज़माने में हम औरतें घर में ही तो रहती थी, कितना मन होता था कि कुछ अपना कर पाएं, लेकिन घर में कहाँ इजाज़त थी। आजकल की बहू बेटियाँ अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पा रही हैं तो उन्हें करने देना चाहिए।
1: वसुधा, तुमने सचमुच मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं तो यही सोचता था कि यदि गुस्सा ना दिखाओ और रोब ना झाड़ो तो ये नए बच्चे हमारी बातें सुनेंगे ही नहीं।
3: पिताजी, हम आपकी बातें सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी चाहते हैं।
1: शांभवी
3: जी, पिताजी, यदि आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ करना चाहिए तो हमारी आपसे बस एक ही अपेक्षा होती है कि आप सभी से ये कहें कि हम आपका वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसा आप चाहते हैं।
0: आजकल की पीढ़ी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
5: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोता, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक एवं उनकी मां की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यूक्रेन में 2022 में बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण शुरू होने और लगातार 5 साल तक युद्ध जारी रहने के कारण कई माताओं ने अपने प्रिय बेटों को खो दिया या उन माताओं के लिए अत्यंत दुखदायी है। लेकिन इस पीड़ा के बावजूद कुछ माताओं ने अपने साहस का परिचय दिया और वे प्रेरणा स्रोत बन गईं। ओलेना उन्हीं माताओं में से एक है। कहानी यूक्रेन के पुलिस ऑफिसर तारस कौरिक और उनकी मां ओलेना की है। तारस की फरवरी 2023 में मौत हो गई। यह दर्द, याद और उम्मीद से भरी कहानी है और साथ ही शहीद एवं लापता लोगों के परिवारों के लिए सांत्वना। मेरे लिए और हर माँ के लिए वह सबसे अच्छा बेटा था। इन्हीं शब्दों के साथ ओलेना अपने बेटे तारस कौरिक की याद करती हैं, जिनका जन्म 1988 में पश्चिमी यूक्रेन के हालिबोका गांव में हुआ था। उनकी कहानी में सालों के प्रवासन, युद्ध और दुख के साथ साथ एक हिम्मत भी शामिल है, जिससे एक माँ अपने बेटे की याद को संजोती और अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल देती है। 1999 में ओलेना ने यूक्रेन छोड़कर इटली में काम करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने अपने मुश्किल आर्थिक स्थिति के कारण लिया था, ताकि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सके। तारस अपनी माँ से दूर बड़ा हुआ। अपना कैरियर चुनते हुए वह पुलिस बल में शामिल हुआ। उसने 2014 में देश के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लौटने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स में अपनी सेवा जारी रखी, लेकिन बड़े पैमाने पर रूसी हमले ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। मार्च 2022 में तारस को माइन क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए बूचा, एरपिन और होस्टोमेल शहरों में भेजा गया। वहीं उन्होंने युद्ध के सबसे बड़े असर देखे। ओलेना बताती हैं कि जब वे घर लौटे तो वे बहुत बदल गए थे। उन्होंने जो देखा था उसका उन पर बहुत असर पड़ा था। पत्नी और 8 साल के बच्चे के होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से मोर्चे पर जाने का फैसला किया। जब उनकी मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो उन्हें आज भी याद है। लोग युद्ध से भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं वहां ज्यादा काम का हूँ। यह फैसला डोनेस्क इलाके में अनाथ बच्चों के साथ काम करने के उनके अनुभव से भी आया था। उन्होंने अपने फैसले का कारण बताते हुए माँ से कहा, उन बच्चों का कोई नहीं बचा। 14 फरवरी 2023 को माँ और बेटे ने देर रात तक फोन पर बात की। तारस जानता था कि उसकी यूनिट को बखमुट इलाके में भेजा जाएगा। उसने अपनी माँ को बताया, 2 हफ्ते पहले यहाँ 250 आदमी पहुँचे थे, 1 हफ्ते बाद अब सिर्फ 50 जिंदा बचे। अगले दिन उसने उससे फिर से भरोसा दिलाया, हम मोर्चे पर जा रहे हैं, हम शनिवार को बात करेंगे, लेकिन वह फोन कॉल कभी नहीं आया। कई दिनों की परेशानी, तलाश और उम्मीद के बाद ओलेना इटली छोड़कर यूक्रेन चली गई। हफ्तों तक अपने बेटे को अस्पतालों में ढूंढा और इस सोच पर अड़ी रही कि उसे कैदी बना लिया गया है। वह कहती रही, मुझे यकीन है कि तारस जिंदा है। इंतजार के उन दिनों में ओलेना ने रेड क्रॉस का भी सहारा लिया और दूसरे परिवारों के साथ पोप फ्रांसिस से एक मुलाकात में शामिल हुई। बारे में संत निकोलस के पौत्र अवशेष के सामने एक ही प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को लौटा दें, चाहे जीवित या मृत। कुछ दिनों बाद तारस का शव मिला। वे याद करती हैं कि उनकी ममता की चीख मीलों तक सुनी जा सकती थी, एक ऐसा दर्द जिसे समय के साथ उनके परिवार और समाज ने सहारा दिया। आज ओलेना ने अपने समुदाय में एक संघ बनाया है जो शहीद सैनिकों की माताओं और पत्नियों को एक साथ लाता है। हर साल मदर्स डे पर वे उन लोगों की मदद करने के लिए एक साथ आने, प्रार्थना करने और याद करने का अवसर आयोजित करती हैं जो इसी तरह का दुख झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी निश्चित किया कि 18 फरवरी 2023 को शहीद हुए तारस के सभी 22 साथियों को राजकीय सम्मान मिले, जिसको बाद में किया गया। उनकी दुआएं खासकर उन परिवारों के साथ हैं जो अभी भी अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। वे कहती हैं,
मैं अक्सर उन माताओं के बारे सोचती हूँ जो अभी भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। इस दर्द के लिए कोई शब्द नहीं है, हम बस जिंदा हैं। इसी अनुभव ने उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है। एक माँ ने उनसे कहा, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बात करनी है। इसलिए उन्हें यकीन है कि नज़दीकी, याद और इंसानियत में बहुत ताकत होती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक और उनकी माँ की कहानी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका आज कल की पीढ़ी, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, समाज में नई और पुरानी पीढ़ी की सोच से आज के बुजुर्ग दोराहे पर खड़े हैं। युवा पीढ़ी नई सोच के साथ जिंदगी के पथ पर दौड़ रही है तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती। कुछ लोगों का मानना है कि बुजुर्ग आज के युवक युवतियों पर तीखी टीका टिप्पणी करते हैं। इनका कहना है कि उनके जमाने में तो मर्यादा थी। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि बुजुर्ग दकियानूसी परंपराओं को ढो रहे हैं। नई पीढ़ी को यह याद करनी चाहिए कि बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है। उनका कहना भले ही दकियानूसी लगे पर वे उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। वहीं बुजुर्गों को भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। युवा बुजुर्गों की मदद करें, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखें तो बुजुर्गों को भी युवाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका आज कल की पीढ़ी।
1: क्या ये आजकल की पीढ़ी भी, जब देखो तब आपस में फिल्मों की ही बातें करते रहते हैं। अब वो शर्मा जी का बबलू देखो, अरे उसके पिताजी लाख कह रहे हैं कि दूसरे दिन परीक्षा है भाई, जरा पढ़ लिख लो। लेकिन नहीं, साहबजादे को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मतलब है।
2: अब आप क्यों किसी और के लिए अपना खून जला रहे हैं? वो बबलू अच्छा खासा टॉपर लड़का है, और मान लिया कि कल को वो हो भी गया फेल तो उसकी फीस हमें तो नहीं भरनी है।
1: यही बस यही बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है, हमें क्या लेना देना है? अरे भाई, हम सभी ऐसे सोचने लगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा?
2: आजकल सभी अपना अपना सोचने को सक्षम है। जो किसी और के विषय में सोचता है ना, उसे पंचायती कहा जाता है।
1: हाँ, आजकल सभी को अपना अपना काम करना जो पसंद है, किसे लेना देना है कि इस बूढ़े को क्या चाहिए। अरे बहू, शाम्भवी, वो केले के पकौड़े बनाए क्या? कई दिनों से मन कर रहा था।
3: बना दिए हैं पिताजी, आइए, प्याज और पालक के भी बनाए हैं।
1: हाँ हाँ ठीक है, एक हाथ बार मेरे मन का क्या बना दिया, ऐसा ढिंडोरा पिटा जा रहा है कि बस। आजकल किसी के पास समय ही कहाँ है कि माता पिता के पास बैठकर बातें करें।
4: पिताजी कहाँ हैं आप? अरे वाह, पकोड़े बनाए हैं। पिताजी आज मैंने हाफ डे लिया है, शाम को हम सभी सिटी पार्क में जाएंगे, वहाँ से सेंट्रल होटल में खाना खाकर ही लौटेंगे।
1: क्या फिजूल खर्ची लगा रखी है, आजकल की पीढ़ी के पास पैसे क्या आ गए हैं, हर चीज को पैरों की नोक पर ही रखते हैं।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उसने छुट्टी ली है आपके लिए, ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं फिजूल खर्ची का।
1: और नहीं तो क्या, जवानी है, फुर्ती है, इसलिए पैसे का जोर दिखाना चाह रहा है। कल को मेरे जैसा रिटायर्ड हो जाएगा तब मालूम होगी पैसे की कीमत। यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है।
3: पिताजी पानी, पकौड़े और लाऊं?
1: रहने दो। अरे शाम्भवी, वो गुप्ता जी ने कुछ कागज दिए थे टाइप करने को, हो गए हैं क्या?
3: जी पिताजी हो गए हैं, आपके दराज के पास रख दिए हैं।
2: सुनिए जी, आपके लिए गुप्ता जी का फोन है।
1: हाँ हाँ आया।
3: माँ मैं क्लास जाकर आती हूँ।
2: हाँ बेटे, मुन्ना सो रहा है क्या?
3: जी सो रहा है, उसका दूध बनाकर रख दिया है, बस एक मिनट माइक्रोवेव करना रहेगा।
2: तुम आराम से जाओ बेटा, आज क्लास में परीक्षा है ना?
3: जी। अच्छा मैं चलती हूँ।
2: ठीक है बेटा।
1: हाँ गुप्ता साहेब बोलिए, क्या हाल है? अरे हमारा क्या है भाई, बस वक्त को कोस रहे हैं और उसी को काट रहे हैं। ये आजकल की पीढ़ी भी, अरे अब अपना ज़माना थोड़ी रह गया है। आजकल जिसे देखो बस अपना ही सोचता है, अपना काम करने का किसी के पास समय थोड़ी है। अरे हाँ, वो तुम्हारे कागज़ बहू ने टाइप कर दिए हैं। अब आजकल की बहुओं से थोड़ा ही होता है घर का काम धाम, बस अपने बच्चों को सास के भरोसे छोड़कर चली जाती है। बस यार चल रहा है, चल रखता हूँ, अपना काम तो खुद ही करना होगा। अपने बुढ़ापे में कहाँ वो सुख जो अपने बाप दादाओं ने भोगा। अब कुछ पत्रिकाओं का चंदा भरना था, अब लगता हूँ उसी काम में।
4: पिताजी ये लीजिए।
1: ये क्या है?
4: ये रसीदें हैं पिताजी, आप हर महीने जो पत्रिकाएं मंगवाते हैं उनकी।
1: हाँ हाँ रख दे, जरा सा काम क्या कर दिया, प्रमाण पत्र मांगने चला है और वो आश्रम का ड्राफ्ट बनवा दिया था।
4: जी बनवा दिया था, और मैं खुद जाकर वहाँ के मैनेजर से मिल आया हूँ। वो कह रहे थे कि आश्रम में 5 और सदस्य आने वाले हैं, इसलिए उनका खर्चा मैंने नकद भर दिया है। और पिताजी, ये आपके लिए लाइब्रेरी से किताबें बदला कर लाया हूँ।
1: हाँ रख दो, किसे आजकल बूढ़ों की फिक्र है। जरा असुविधा हुई नहीं कि कर दिया घर से बाहर, सभी जगह एक ही हाल है। ये आजकल की पीढ़ी तो बस
2: बस भी करिए जी, कितना बोल रहे हैं। बहू जो कहे वो हुक्म बजाने को तैयार है, आपका छोड़ आपके दोस्तों का भी काम कर देती है। बेटा आपके खाने पीने, दवा दारू, मनोरंजन और समाज सेवा तक का ख्याल रख रहा है, और आप हैं कि उन्हें उन लड़कों के समकक्ष रख रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है।
1: तो और क्या, तुम इस भ्रम में मत रहना वसुधा कि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। ये जो अपनी जायदाद है ना, उसके पीछे हो रहे हैं सारे नाटक। ये आजकल की पीढ़ी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो मिश्रा जी को देखा था, कैसे नरम दिल बनते थे। सारी प्रॉपर्टी जीते जी बेटे के हवाले कर दी और अब जा पहुँचे वृद्धाश्रम।
2: देखिए जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि इस समय हमारे देश में 35 करोड़ से भी ज़्यादा बूढ़े हैं जो अपनी संतानों पर आश्रित है, और देश के वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या कुल इनके 5% से ज़्यादा नहीं है जो घर से निकाले गए। तो क्या उन 5% नई पीढ़ी के लोगों के पीछे आप सभी को बदनाम करते फिरेंगे?
1: लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे निकले तो, यदि कल को उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल लिया तो?
2: देखिए, आप अच्छा व्यवहार रखेंगे ना तो आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी आपको हाथों पर उठाकर रखेंगे, लेकिन ढेर सारी जायदाद रखकर भी आप ये फूटी जबान चलाएंगे तो आपके प्रति किसी के मन में क्या सम्मान रह जाएगा?
1: ये सब कुछ तुम्हें सुधीर ने कहा होगा।
2: वो क्यों कहने लगा कुछ भी? क्या मेरे आँख नहीं है देखने को, कान नहीं है सुनने को? अपने दोस्तों की महफिलें जमाते हैं आप, सभी के बीच बहू से चाय पकौड़े की फरमाइशी करते हैं आप, और वही बहू जब सभी को प्रेम से नाश्ता परोसती है तब उसी के सामने कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए तो जरा क्या गुजरती होगी उसके मन पर।
1: लेकिन मैं उसे थोड़े ही कहता हूँ।
2: लेकिन उस समय नई पीढ़ी यानी वो ही होती है ना वहाँ, उसे तो यही लगता होगा कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए ये पिताजी को कभी भी संतुष्ट नहीं रखा जा सकता।
1: अरे लेकिन ये तो उसका कर्तव्य है ना।
2: माना कि ये उसका कर्तव्य है, लेकिन जब वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रही है तब आप उसे सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं?
1: देखो वसुधा, मेरे मन में तो ये बात नहीं होती। चारों ओर सभी के साथ जो होता हुआ देखता हूँ वही सबके सामने कह देता हूँ।
2: लेकिन इन सभी में आप शामिल नहीं है क्या? क्या आप अपने दोस्तों को ये नहीं बता सकते कि आपके बेटे बहू कितनी अच्छी तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं? आप लोग तो जैसे मौसम और राजनीति की चर्चा करते हैं वैसे ही आकर नई पीढ़ी की बुराई करने लग जाते हैं। आखिर कभी अपनी ओर भी तो देखिए।
1: वसुधा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सचमुच में बड़ा भाग्यवान हूँ, गुप्ता जी के बेटे बहू भी उनका ख्याल रखते हैं।
2: और आप दोनों ही हैं जो सबसे ज्यादा इस नई पीढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, हर पीढ़ी के साथ जीवन बदलता है, उसकी शैली बदलती है, थोड़ा हमें भी बदलना चाहिए। अब आपके ज़माने में हम औरतें घर में ही तो रहती थी, कितना मन होता था कि कुछ अपना कर पाएं, लेकिन घर में कहाँ इजाज़त थी। आजकल की बहू बेटियाँ अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पा रही हैं तो उन्हें करने देना चाहिए।
1: वसुधा, तुमने सचमुच मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं तो यही सोचता था कि यदि गुस्सा ना दिखाओ और रोब ना झाड़ो तो ये नए बच्चे हमारी बातें सुनेंगे ही नहीं।
3: पिताजी, हम आपकी बातें सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी चाहते हैं।
1: शांभवी
3: जी, पिताजी यदि आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ करना चाहिए तो हमारी आपसे बस एक ही अपेक्षा होती है कि आप सभी से ये कहें कि हम आपका वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसा आप चाहते हैं।
0: आज कल की पीढ़ी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
5: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।